माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे जी

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़के पसम हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्होंने दशक प्रजापति का सिर वड के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलव आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने महाभैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटां विच

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखया, ओ नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच

पावक अनक लख बरिया अनठोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारिक बपुरे की सर्प अग्नि

वामदेव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साय। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग कर दे, नाम जप दे, परमात्मा नू याद कर दे, अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उन्हां

स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आने वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है ओ नको नक परा। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है।

परमात्मा दे चरणा कमलां विच जुड़ गए। जदों तार मिली परमात्मा दे चरणा कमलां च ते भगत नामदेव दी जो बेनती सी ओ नारायण ने सुनी, जिस तरह ही तत्काल ए अरदास सुनी ते ओसे खूह दे विच्चों इक कड़क दी आवाज आई, मानो के धरती फट गई उस खूह दी ते थल्ले जो पानी सी ओ लबालब खूह दे विच पर आया। जदों देखिया ज्ञानेश्वर जी ने और उन्हां दे सेवकां ने कि भगत नामदेव दी अरदास उस नारायण दे चरणा कमलां विच कबूल होई है, तां सारे आए

मगर नामदेव दिखाई नहीं दिते, क्योंकि नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े ते ज्ञानेश्वर जी ते उना दी मंडली ते अगे नू चाले पा गए, मगर नामदेव दी समाधि खुली ते की देखदा है कि उस चौंक दे नेड़े तेड़े एक पठान खलोता है, ते उस पठान ने पगड़ी पाई हुई है, ते उस पठान दे कोड़ी ने वछेरा दिता है, कदी वछेरे वल देखदा है नामदेव ते कदी उस दी पगड़ी वल देखदा है, ते पठान नू देखदे देखदे मानो पठान दे रूप विच्चों नारायण नू देखदा होया।

कामदेव ते भगती दी अवस्था विच सन। ओ ते नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े हुए सन ते हर विक विचों नारायण देखदे हुए ओ इस पठान नूं वी नारायण कह रहे हन। कहंदे हन कि मैं

बादशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकदा ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउणे ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पीवो ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बारक साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई हजूर बख्शिश कर रहे हन के नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदता हन संगता हन ओ आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी आओ सारे प्यार दे नाल जपी

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असां कलयुगी जीवां दा उद्धार करन

बुद्ध सदी पुत जो उजारे ज्ञान की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञान की बढ़ने।

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के भवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा। गुरु सेवा ते भगत कमाई

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बुद्ध सो दीपक जू जियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहंदे ने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै, ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे, ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहे गुरु।

नहीं तुझ जेहा बदो पुरख बिधाते था तू सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझ जेहा बदो पुरख बिधाते था तू सुहे वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसम।

सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार हो गए।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ अस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदा हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारयां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। ते दुर्वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों तक पेख, चरणों तक लै पेख, उस श्राप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया, तो वह श्राप देने वास्ते तैयार हो गया। अखां गुस्से नाल लाल हो गई है, कहन लगा, राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, श्राप भी देवांगा। राजे ने कहा, महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होण कारण विद्वाना दी सलाह ते मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा ऋषि ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन्नू मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म कीता, उस चड़ेल नू जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा, ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनू

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया, वो चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है भगत अमरीक नूं मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा रेखी एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करते ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्भाषा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड्डी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड्डी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्भाषा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्भाषा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै रखिया ना हंगण देव सबाया, हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ए दुर्भाषा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहण लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहण लगा ए मेरे वस दी गल नहीं, तां दुर्भाषा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहण लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्भाषा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया, तां ब्रह्मा जी कहण लगे तेनू बचाणा हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। तां फिर दुर्भाषा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल, तां विष्णु भगवान कहण लगे कि मैं भी तेनू नहीं बचा सकदा। भाई गुरदास जी इस गल दी गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इस नूं आसरा जदों ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्भाषा ऋषि कि सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। तां उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया, देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्भाषा तू भगत नूं बुरा के, तू भगत नूं दुख देना चाहे, इस करके अगर भगत चाहेगा तां ही तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना बड़ा हो।

परमेश्वर, किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। ना उन्हें दिठाकर दई सुदामे त्रू अटल अज हूं ना टरियो। अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी, त्रू भगत ते कृपा की थी। भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते नहीं

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता, जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानो कलयुग जीवां नूं उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया, ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनु चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

दियों लवत है नोह मीठा माया, कंचन नारी में जियो लोबत है वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विशे विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

क्यों नहीं? जे मनुख चंगियाई वाल तुरे ना वो अपने गुण ही गिनी जांदा, कहिंदा वेखो मेरे अंदर किन्ने गुण ने। कदी असी परमात्मा दे गुणा वाल भी ध्यान दिता है? जे एक व्यक्ति दे गुण नहीं गिने जा सकते कि असी परमात्मा दे गुण गिन सकते नहीं। इथे यह कहना पाएगा, हे परमात्मा तू बेअंत है, मेरे अंदर अवगुण बतेरे ने, मैं ते अवगुण बख्शान आया। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, किछ रूप नहीं, मेरा ते रूप भी चंगा नहीं। हुण तुसी हैरान होवोगे कि रूप केड़ा। सानू अपनी सुंदरता ते माण है, खूबसूरती ते माण है कि असी बड़े खूबसूरत हां। साहब कहिंदे ने ना भाई, इत्थे रूप है सेवा दा। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं। कईयां नूं माण हुंदा कि मेरी जात बड़ी उच्ची है, मैं बड़ी उच्ची कुल विचों हां। साहब कहिंदे ने नहीं, इत्थे रूप है सेवा दा ते जात है नाम जपण वालियां दी। उच्ची कुल विच कौन ने? जिन्हां कुल सिमरन है। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। हे परमात्मा मेरे कुल कोई ऐसा ढंग भी नहीं। फिर कहिंदे ने, क्या मुंह लै बोले गुण विहून, नाम जपिया ना। क्या मुंह लै बोले? हे परमात्मा मैं किड़ा मुंह लैके तेरे सामने आवां, किवें तेरा सामना करा? कहिंदे ने जिवें एक मित्र अपने मित्र नूं कहिंदा है, मित्रा ऐ मेरा एक काम है ते तू कर सकदा, ते तू ये काम मेरा जरूर करना है। कहन लगा, चंगा भाई जरूर करांगा। कुछ समा बीते है कि दोनों मित्रां दा सामना हो गया। हुण जिस मित्र ने अपने मित्र नूं काम किया सी उहनूं भी याद आ गया, ते जिसने हामी भरी सी उहनूं भी याद आ गया। हुण जिसने काम आख्या सी ओह कहन लगा, लै मेरा मित्र मिलिया, काम होया होना, मैं अज इहनूं पुछना, ते जिन्हें करना सी उहने कीता, कोई नहीं हुण ओह अख बचांदा है। कहिंदा किते होवे ना होवे ए अख परां करे ते मैं कोलों दी लंघ जां, इहदा मेरा सामना ना होवे। जे सामना हो गया इहने मैनूं पुछना, मित्रा सुना काम कीता ही, मैं जवाब की देवांगा, की आखांगा? साहिब कहिंदे ने भाई इसे तरह उस परमात्मा अकाल पुरख ने तेरे जिम्मे एक ड्यूटी लाई सी। जदों तू परमात्मा तो आया है ना, तू संसार विच जन्म लिया है ना, माता दे गर्भ विच सैं, उदों तू परमात्मा नाल एक वादा कीता सी, हे परमात्मा एक बार संसार विच भेज, मैं तेरा सिमरन जरूर करांगा। उदों एक वादा कीता होया। कहिंदे ने हुण ओह ते तू भुल गए है, ते परमात्मा दा सामना किवें करें? जदों परमात्मा दे सामने होया उन्ने पहले पुछना, सुना मित्रा जेड़ा वादा कर गया सैं ओह पूरा कीता ही? नाम जपिया ना तेरा, मैं तेरा नाम नहीं जपिया, मैं सिमरन नहीं कीता, जेड़ा वादा कीता सी मैं पूरा नहीं कर सकिया। साहब कहिंदे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनु अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल देंदे हुए कह

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी कहो जाए ते आप कहो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है,

मालूम नहीं है मोहे संसार पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तू किन्ना दयालु है,

0: गुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालक अगे किस तरह बेनती करिए,

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहिंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा है, ते नाम मिलदा कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना खैरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदे ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुच्छा जन्म भी इसी तरह रुड़ जाएगा। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

साहिब आज फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवन कर रहे हो ए लफज जेड़े सन

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी

कि ये सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाए नहीं निकली, कदी अखां तो अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निस्संदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकते। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वाल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहब जी उस आदमी नू जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुत्ता पिया सी, उस नू वैरागमय नींदर तू जगाउण आए। ओ आदमी जी दा नां सी माधो दास। इस तू पहला कदी उस दा नाम नारायण गिरी भी सी, अते इस तू पहला उस दे माता पिता उसनु लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है, इसनु वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे वाल

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जिहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिया, पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिया हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बने, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बने, योग सिख्या ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण लग पिया अते अपना समा योग साधना विच बताण लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदे। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहण लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दी अखां नहीं हुंदियां। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहण लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां
पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधोदास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वल तुर पिया।

जिस वक्त अपने आश्रम विच पहुंचिया तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

गुरु जी हस पे अते उस दे तप द्वारा कठोर बने हुए शरीर नूं इउं तकिया जिवें उन्हां दियां अखां दो हाथ होण।

समाधो दास बैराकी तू कौन है ता माधो दास बैरागी चरणा नु चुमदा होया कहन लगा मैं तुहाडा बंदा गुरु जी मैं तुहाडा बंदा मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक की थी बड़ा ढूंढिया बड़ा लभिया अज तुसी मिले मैनू शांति नसीब हुई मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधुदास नू उठा के अपने कोल बिठाया प्यार नाल के है जानदे हुए भी पुछदे ने तू बैरागी क्यों बने ता माधुदास ने अपनी कहानी सुनाई। एक हिरनी दा मैं शिकार कीता ओ मरी ओदे बच्चे भी तड़प तड़प के मर गए ता मैं बैरागी हो गया। ता गुरु साहब ने कहा

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दित्ता गया। ये सारियां गल्लां माधोदास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों अथरू वह तुरे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधोदास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती कि मैनूं आग्या दिओ अते मैं जाके जुलम दा जिहड़ा राज है अते जालम जिहड़े ने उहनां नूं खत्म कर दे। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जांदा। गुरु साहब ने अपने 5 तीर दिते जिन्हां दे नाल सोने लगे हुए सन। 5 सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमां दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों

अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहे, मैं जालमा का नाश कर रहा, उन्होंने किलिया ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हों में जुलम होंगे नहीं, वो शहर तबाह कर देंगा जिन्हों शहर मजलूमां नू जालम तंग कर दे नहीं। ये कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नू तुरिया जा रहा है।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाई, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितरे नहीं मिलदा। साडे सारिया दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जो कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जो कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचो अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबंच कहने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, ये किवें हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नाद की गल करता, कोई उसनू इलाही नाद की गल कह के करता, कोई किसे ढंग नाल दसता है। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इहदी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरिया बच्चिया वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चिया दे अंदर शौक पैदा करता जांदा है। पढ़ेगा बहुत वड्डा अफसर बनेगा, बड़ियां तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिया बहुते तां रोंदे ही वेखेगा, ओनू एक बार धक्के स्कूल पहुंचा पैदा, उथे जाके बहिंदा, एक तो जकड़ के बहना बड़ा होता, एक जो कुछ पढ़ाते नहीं ओरी समझ तो बहरा हों, पहला पहला बड़े परेशान होता, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अखर है बोझ जापते। लेकिन चार दिन बाद जरा बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अखर मौज बन जाते, उन्हें अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे ओरी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेडे कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारते ने, पासे मारते ने, किहड़े वेले भुख पवे जान छुट्टे, फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है भी स्कूल जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, ओह वरिया बद्दी पंद्रह पंद्रह वीह वरे बोझ ही ढोंदे ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे भी ने, रोंदे हुए दुखी होंदे हुए, कई वारी ओह फेल हो जांदे ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो को शर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं हुंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उहनां दे माता पिता उहनां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा विगार करदा, तू कसीट के तुरिया आउंदा, वैसे पढ़न वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ।

मेरी चोली किसी ने नहीं भरी, इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सहित बोलो श्री, इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

देख रहा पता गुरु गोविंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोविंद सिंह। धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है कि

दिल रारा गुरु गोबिंद सिंह साहिबे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है संसार का मालक है और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला सात सगत बोलो श्री क्योंकि तेरे जैसा संसार ते और कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा तू भगत भी है तू दानी भी है और तू शुरवीर भी है भगत एडा है कि जब आनंदपुर का किला उजड़ गया पीछे मुगल सेना लगी हुई 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल जाउंद्या जाउंद्या जब अमृत वेला होया तो साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हैं कीर्तन नहीं सुने ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया आशा दी वार दा समा हो गया कोई है कीर्तनिया पर सानू कीर्तन सुनाओ सात संगत बोलो श्री भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो आख्या हां दया सिंह कीर्तन आत्मा दी खुराक है आत्मा का भोजन है कितने कु सिंह हन नाल आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल आख्या फिर अधे कीर्तन विच बह जाओ ते अधे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खरार दे सारे हो जे दुश्मन दल आवे ते उसनु रोक के रखन कीर्तन आरंभ हो गया उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती सिंह लड़ रहे हैं इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे सत संगत बोलो श्री इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए सुध साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणों विच शीस चुकाया ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए हैं सत संगत बोलो श्री भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए ओ गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता जी साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं आख्या लगभग 250 आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते दया सिंह तू भी शहीद हो जाता मैं भी शहीद हो जाता लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख के चरणों के नाल कीर्तन विच जुड़े हैं उसकी जड़ी भगती की है असी ये सौदा सस्ता किया सत संगत बोलो श्री भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी हिंदू धर्म की रक्षा की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई आनंदपुर का किला उजड़ गया चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते माता नू कुर्बान कीता धर्म की खातर सारा परिवार खेरू खेरू हो गया आ सारा सरबंस दान कर दिता तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा सात संगत बोलो श्री आख्या और शुरवीरता तेरे विच किडी
ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਘੇਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਵਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਵਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸੱਵਰ ਖੇਚ ਲੈ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਤੁਝ ਕੋ ਰਸਾਈ ਹੈ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਮਸਲਤ ਪਰ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਿਲਾ ਤੁਝ ਸਾ ਮੁਝੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ

सत्संग बड़ा मुश्किल रह गया, चोखा मुश्किल, एक गया नहीं जाता। इन्नी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गाने लगे, तो मालिक बड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा आन जान बड़ा विकट टेढ़ा जिहा है। आप सुनो

तू सुचा समझ के लियांदा है ओ ता झूठ है। किवें परमेश्वर ने 84 लाख जूना पैदा कीती।

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा ता पवरा उन्हों सुंग जांदा।

पर सोचे मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणुआ दे सदका सारा दूध झूठा हो जाता है ए दूध झूठा खीर झूठी पाई मैं ठाकुर दी सेवा कादे नाल करा।

जिस तरह रम्यो होया है, जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है, जदू शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदू देखांगे

मत नाल वाहिगुरू याद करना सी ओ मत पसारिया ने मारनी नहीं इथे ता आउना ते जाना है इथे ता धर्म कमाउना है ते धर्मशाला जान के टिकना ते तुर जाना है मन इथे नहीं लाउना मन ओंदे नाल लाउना है जिसने भेजिया ते बुलाउना महाराज कहंदे ने कोयल आया कोयली क्या तिस डंफ पसार मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार गुरु की सेवा प्यार नाल कल प्रभु नु याद कर ओदे गुण गा क्या थोड़ी बात गुमान जैसे रैन प्राहो ने उठ चल से प्रभात क्या तू रत्ता ग्रस्त से ओसा फुला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिंदिया सो प्रभ लोड़ सर पर उठी चल सा चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी भ्रमतिया सो दिन लख चौरासी भ्रमतिया दुलभ जन्म पायो नानक नाम संभाल तू जिदी लोड़ है तेन एथे भी ते दरगाह विच भी जिसने तेरा मुख उजला करना है

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा